कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे। जी हाँ दोस्तों, मुझे आजमाने आप आ चुके हैं उस पार, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं आपके प्यार को आजमाऊंगी आज कि आप कितना मेरे करीब आए हैं। आपकी दोस्त सविता करती है सभी दोस्तों का स्वागत कार्यक्रम नॉन स्टॉप कर्शप में 107 FM रेनबो पर।

0: खैरियत तो पूछो। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप सभी की खैरियत पूछ रही हूँ। आप सब ठीक ठाक हैं ना? और ऐसे भी जब आपसे बात होती है तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आप हैं कैसे। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और हमारे कार्यक्रम को बस यूं ही सुनते रहें। आपकी दोस्त सविता आपके साथ यूं ही गुफ्तगू करती रहे। तो चलिए आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं।
1: आज के दिन,
0: आज के दिन के सेगमेंट में, जी हाँ, आज के दिन क्या खास हुआ था ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं का ताना बाना एक कहते हैं ना, एक समृद्ध ताना बाना है जो अपने आप में बहुत सारी घटनाओं को समेटे हुए है, जिसने दुनिया को विभिन्न तरीकों से आकार भी दिया है। सन 1066 में इसी दिन स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई अंग्रेजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जब राजा हेरोल्ड द्वितीय की सेना ने आक्रमणकारी नॉर्वेजियन सेना को हराया। हालांकि यह घटना अक्सर इसके तुरंत बाद हुई हेस्टिंग्स की लड़ाई के कारण दब जाती है। शासन और मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने 25 सितंबर 1789 को मानव अधिकार विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसके मूलभूत नागरिक स्वतंत्रताएँ स्थापित की गईं, जो अमेरिकी समाज में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह दिन 1890 में सिकोइया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का प्रतीक है, जिसने अपार प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व वाले क्षेत्र को संरक्षित किया था। इस तरह से ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थीं जो हमने की आपके साथ साझा। दोस्तों, आज के कई कारणों से दिन भी खास मनाए जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे खास दिन हैं जिन्हें मनाया जाता है और जिसके बारे में महसूस जागरूकता फैलाई जाती है। दोस्तों, इसी में से पहला मैं एक खास दिन आपको शेयर करूंगी, क्योंकि ये हमारी नॉन स्टॉप गपशप का विषय भी है। बिल्कुल दोस्तों, आज विश्व स्वप्न दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। इसके आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? बस इसका उद्देश्य तो यही है कि जो स्वप्न देखते हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश करते रहिए पॉजिटिव वे से। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में स्वप्न देखता है। कुछ लोग पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को अपने सपने को हासिल करने से रोकती है वो क्या है? वो है डर कि पता नहीं मैं इस सपने को पूरा कर पाऊँगा या नहीं, करूँगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। मन में तरह तरह की चिंताएं आती हैं। भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के कारण कई बार हम डर जाते हैं। हम इस बात से डर जाते हैं कि पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा या फिर नहीं, तो हम अपने लक्ष्यों को खोजने के लिए भटक जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्वप्न दिवस है वो हर इंसान को जीवन में सपने देखने के लिए जागरूक करता है कि आप किसी भी अज्ञात डर से दूर भाग जाइए। इसके बारे में हम और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आज मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ? अरे दोस्तों, मैं यही तो पूछने वाली हूँ कि क्या आप सपने देखते हैं? सपने देखते हैं तो आपके जीवन का सपना सबसे बड़ा कौन सा है, और क्या उस सपने को आपने पूरा कर लिया? नहीं किया तो कैसे किया, करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उम्मीद रखते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए? क्योंकि हमारे देश के महान राष्ट्रपति और अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि मनुष्य को जीवन में सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए लक्षित करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारा आज का विषय यही है कि क्या आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो आपके सपने को पूरा कर दिया या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम बात और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको सुनवाएंगे एक गीत, और हमारे साथ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनसे भी पहले ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई एक हमसे कॉलर जुड़ना चाहते हैं। तो हेलो हेलो हेलो वो हमसे मिलने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं वो क्या बात करना चाहते हैं। हेलो, आप ऑन एयर आ चुके हैं, आप बोल सकते हैं। हेलो, तो दोस्तों उनकी किसी कारण से आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, तो फिलहाल तो हम गीत सुनवाएंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, हमने जो देखे सपने, जिसने सपने देखे और सच हो गए, सच में कहते हैं ना, वो तो बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और ज़िंदगी में किसने कहाँ सपने देखे, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपने हैं, सपनों को तो आना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर, तो हम पहले उनसे बात करते हैं, बाद में हम अपनी बात करेंगे। हेलो
1: दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नन्ने बोल रहा हूँ, बाटा नगर से।
0: नन्ने जी, बाटा नगर से जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं।
1: मैं भी प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ, आप लोग का प्रोग्राम सुनना मेरा एक सपना है
0: जी। अच्छा, आपका सपना ये है, चलिए ये अच्छी बात है, बताइए।
1: तो बात आपको कहूँगा अभी।
0: हाँ बोलिए।
1: सपना जैसे सपना हमेशा पूरा है, और सपना तो देखना हर इंसान हम देखते हैं ना, कभी कोई इंसान सपना देखते हैं ना, अपना सपना सुना व्यक्ति के हट जाता है एकदम, बोलता है होगा नहीं, कोई दिन हो करने का कोशिश करता, बोले आप ईमानदारी से कोशिश करो ना, तब तो जरूर होगा ना।
0: बिल्कुल सच
1: बात है, मैं बात कहना चाहता हूँ। हर इंसान हम देखते ना, हमको कोई इंसान को बोल रहे तुमका कोई सपना पूरा नहीं, हम उस टाइम हमको ना अपना सपना में ना करने का इतना एनर्जी बढ़ जाता है ना, सोचते ना और करेंगे जी, कर लेंगे, हर चीज हासिल कर लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा दृढ़ निश्चय हर इंसान के अंदर होना चाहिए। नन्हे जी, आपने बहुत अच्छी बात की।
1: जानते हैं मेरा बहुत सारा सपना पूरा हुआ, बहुत सारा सपना अभी भी देख के रखा हूँ ना, बहुत पूरा करूंगा एकदम। हम अपना दिन को एकदम बर्बाद नहीं करते, हम जानते हैं दीदी 16-17 घंटा भी हम काम कर लेते हैं।
0: वाह, आप मेहनती हैं।
1: हम कोशिश करता हूँ ये चीज किए ना, फिर दूसरा चीज करूंगा, और हम एक चीज नहीं रहता, हम 3-4 चीज एक साथ करता हूँ। जानते हो दुनिया पैसा का सीधा कुछ नहीं है, जैसे बाल बच्चे का कोई चीज का कमी होगा ना, तब कोई इंसान का एहसास हो जाएगा।
0: जी जी जी, तो नन्ने जी आप हमारे साथ जुड़े, बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: हम ये चीज जानते, एक मिनट बर्बाद ना करे, और आप लोग रेडियो सुनना मेरा बहुत शौक है अपना। आप जानते हैं दुनिया कोई भी कोने में रहते हैं ना, कहीं भी जाता हूँ ना, आप लोग आकाशवाणी हम सुनते रहते हैं।
0: चलिए ये तो
1: दिल्ली बॉम्बे कहीं भी हम जाता हूँ ना, जब भी हम आप लोगों का प्रोग्राम नहीं सुन के नहीं रह सकते, हो तो फोन नहीं करते लेकिन प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा चलिए,
1: आप हमेशा तो याद करना, हम भी आप लोग को याद करता हूँ दीदी।
0: बिल्कुल, और हमारा सपना यही है कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमको सुनते रहे और हमें प्यार करते रहे। बिल्कुल
1: ठीक है,
0: ठीक है। तो नन्ने जी ने कहा कि उनका सपना ये है कि वो हम लोगों को सुनते रहे और वो अपने काम को करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और वो बड़े ही पॉजिटिव हैं। ये हमें बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। हमारी दुनिया में बहुत सी चीज़ें एक सपने के रूप में शुरू हुई हैं, और उन सभी अलग अलग आविष्कारों के बारे में सोचना जो पिछले कुछ सालों में हुए, वे आमतौर पर एक सपने के रूप में ही शुरू होते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जो आविष्कार हुए हैं, जो हमारी दुनिया ने तरक्की की है, वो तरक्की सपने से ही शुरू हुई। यदि हमने सपना ना देखा होता तो आज रेडियो ईजाद ना होता, तो रेडियो पर हम और फ़ोन कॉल फोन्स ईजाद ना होते, फ़ोन पर हमारी आपकी बात ना होती, आप रेडियो के ज़रिए हमको ना सुन रहे होते, तो ये आविष्कार करने का सपना ही तो था। दोस्तों बिल्कुल, सपने ज़रूर देखने चाहिए, और हमारे दोस्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले हम बढ़ेंगे आगे कोलकाता कल्चर की ओर।
2: कोलकाता कल्चर,
0: जी हाँ, कोलकाता कल्चर में 25 सितंबर 2026 को कोलकाता में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां होने वाली हैं, और दुर्गा पूजा के आगमन की तैयारियां तो जोर शोर से चल ही रही हैं, और ये सप्ताह का अंत है, इसलिए शहर के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों पर संगीत, नाटक और कला दीर्घाओं के कई आयोजन निर्धारित किए जा रहे हैं। जैसे कि रविंद्र सदन में, कैथेड्रल रोड स्थित रविंद्र सदन में पारंपरिक बंगाली नाटक और संगीत संध्या के विशेष आयोजन, जैसे स्मृति सरणी की तैयारियां चल रही हैं। महाजाति सदन में भी इन दोनों प्रमुख मंचों पर संगीत प्रेमियों के लिए आनंद संध्या और शास्त्रीय संगीत ओपेरा कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ इस वीकेंड कार्यक्रम का हिस्सा होने वाली हैं। इसके अलावा यदि आप विशुद्ध साहित्यिक गतिविधियों में, यानी किताब

0: विभागों में, वाद विवाद में, विमर्श में रुचि रखते हैं तो शहर के ये केंद्र 25 सितंबर को विशेष खुले हैं। रविंद्र सरोवर और पार्क सर्कस के पास स्थित क्षेत्रीय अकादमी केंद्रों पर स्थानीय लेखकों के अनौपचारिक रचना पाठ और पुस्तक समीक्षा की बैठकें आयोजन होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ के विशाल पुस्तकालय जो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी इस दर्शन साहित्य और धार्मिक ग्रंथों पर नियमित व्याख्यान और सांस्कृतिक पाठ का आयोजन किया जा रहा है 25 सितंबर की शाम को। तो ये थे कोलकाता कल्चर के अंतर्गत गतिविधियाँ।
1: कोलकाता कल्चर,
0: और हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं शोभिक शोका बोल रहा हूँ, दीदी कस्बा से।
0: शोभिक जी, जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ।
0: अच्छे हैं, बताइए।
2: हाँ, पहले तो आप बहुत अच्छे से टॉपिक दिया है सपने के बारे में।
0: जी
2: देखिए, हम लोग का छोटा छोटा कोई ना कोई ड्रीम रहता है। हम पहले तो हमको जो छोटा छोटा ड्रीम जो था पहले बचपन में, वो था साइकिल खेलना। हाँ, वो जब भी हम लोग को जब देखता है तो पापा मुझको वो उच्च माध्यमिक पास करके वो मुझको दिलाया था। बहुत ड्रीम था। सेकंड जब जो हुआ था वो 12 होकर वो हुआ था जो नौकरी पाना। दो साल हम लोग में बड़ी बड़ी कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया था, एग्जाम भी दिया था, कोई फॉल नहीं पा रहा था दीदी। उसके बाद दो साल बाद कॉल लेटर आया था, बहुत अच्छा लगा था। और मेल भी आया था, बहुत अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर जो आया था बहुत अच्छा लगा था। मुझे खुशी के बारे में से आंखों से आंसू आ गया था, वो खुशी का आंसू था, बहुत अच्छा लगा था। और अभी जो ड्रीम जो है मुझको जो है चार चक्का जो होता है और जो वो मैं खरीदना चाहता हूँ, वो ड्रीम मैं देख रहा हूँ। वो जब भी मैं किनूंगा तो मेरा जो आत्मीयस्वजन जो फैमिली जो है, दोस्त जो है, उसके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगा। ये मुझको एक ड्रीम जो है वही यही सपना है दीदी। और लास्ट में बोलूंगा दीदी, APJ अब्दुल कलाम बोला था, शो शो के जो जो वो सपने मत देखो, जो सपने आपको
0: जागती आंखों से
2: जाग दिया। हाँ, वो जो सोने नहीं देता वही सपने पूरा
0: पूरा होता है
2: दीदी। ये आप जो कार्यक्रम का जो जो बोला था ना, जो पीच बोला था, बहुत अच्छा सा पीच बोला था दीदी।
0: जी बिल्कुल,
2: जीवन का सबसे बड़ा मुझको जो बोला पौध है दीदी।
0: तो शोभिक जी, आपके सपने पूरे हो, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं। और आपका जब चार चक्का आ जाए तो हमको भी घुमा देना।
2: एकदम श्योर दीदी,
0: ठीक है।
2: ओके
0: बाय। तो शोभिक जी का जो सपना है, हम ईश्वर से कहते हैं कि भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करे, सबके अच्छे सपनों को पूरा करे। और ये तो सच है कि हमारे देश के अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि जो सपना जागती आंखों से देखा जाए और जिसको पूरा करने के लिए आपकी आंखों में नींद ना हो, वो सपने जरूर पूरे होते हैं। इसी तरह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय एक लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषणों में से जिसकी शुरुआत की थी, मेरा एक सपना है, इससे इस शब्द से शुरुआत की थी। और उन्होंने कहा था कि मार्टिन लूथर किंग ने नस्लवाद के अंत का सपना देखा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो दोस्तों, विश्व स्वप्न दिवस पर हमने बात आज हम कर रहे हैं सपने की, कि कौन से वो सपने हैं जो आपके पूरे हो गए और कौन से हैं जो अभी नहीं हुए। इस पर यदि आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, हम आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे। और फिलहाल एक दोस्त और जुड़ रहे हैं तो उनको भी लेते हैं, फिर गाना सुनवाएंगे। हेलो। हेलो,
3: नमस्कार। सविता पोद्दार जी,
0: नमस्कार जी। आपका नाम बताइए।
3: जी, मैं मोहम्मद नासिर, बेरियाघाटा कोलकाता से।
0: मोहम्मद नासिर जी, आपका इस्तकबाल करते हैं हम अपने कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे बातचीत हो चुकी, पापिया जी से, करण सर से, सारे लोगों से, ज्योति जी से बात हो चुकी, लेकिन आज मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: चलिए, आपका शुक्रिया कि आपने हमें

0: कॉल किया और हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बताइए
1: जी, आज आपका टॉपिक जो आपने लेकर के आया है सपना
0: जी,
1: सपने के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, सपने बिल्कुल इंसान को देखना चाहिए, इसलिए कि सपना ही इंसान को प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए या फिर कुछ पाने के लिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, और आगे बढ़ने के जो रास्ते हमारे, उस रास्तों पर न हम चल पाएंगे, न हमारे ड्रीम, न हमारे सपने पूरे होंगे। इसलिए सपना हर इंसान को देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ से कि चाहे वो जो भी सपना देखे वो सपना साकार हो सकता है, पूरा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और ये जो आज दुनिया इतनी प्रगति के पथ पर जो चल रही है वो सपने के कारण ही चल रही है ना?
1: सपने के कारण ही चले, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नहीं देखते आज इलेक्ट्रॉनिक एक ट्रेन बनाना तो शायद हमारे पास वही पहले वाला ट्रेन होता, अगर फिर ये हवाई जहाज बनाना तो हमारे पास साधन नहीं होते। इसलिए ये सपना देखना बहुत जरूरी है और इसे साकार करना भी जरूरी है,
0: और ये हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाए रखने की प्रेरणा भी देता है ना,
1: प्रेरणा देती है जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी।
0: बिल्कुल, तो नासिर जी आप जुड़े और आपने मन की बात कही, इसके लिए शुक्रिया
1: जी। शुक्रिया, धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: जी। मैं ऑन एयर नहीं आ सकता हूँ? मैं
0: आप ऑन एयर ही है।
1: ओके थैंक यू,
0: आपको ऑन एयर ही लिया है मैंने डायरेक्ट।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: ओके।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों हम लेकर आ गए आपके लिए आज सुबह की घड़ी के 10:30 एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद आजमी। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत हुई द बिग न्यूज के साथ कि भारत को उसका ऑन गोइंग एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक मिल गया। जी हाँ, दिस वॉज बॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग वेयर आर शूटर्स गॉट अस द कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द 10 meter air pistol mixed team event. Kamaljeet and Suruchi Singh putting up brilliant performances from the side to reach a tally of 484.6, thereby helping India get that coveted gold. और उसके साथ ही shooters ने men's 50 meter rifle 3 position में भी आज भारत को silver medal दिलवा दिया है, with excellent performances coming in from Aishwarya Pratap Singh Tomar, Neeraj Kumar and Rudranksh Balasaheb Patil putting in a total of 762, thereby helping India get the silver. Moving on to the other big news of the day, this would be from the world of squash, जहां दोस्तों आपको बता दें कि अभय सिंह made quick work of Japan's Runosuke Sukhoi, beating him 3-0 in straight matches, 11-4, 11-3, 11-6. In just 30 minutes to reach the men's singles semi-final. A small correction over there, in straight games to win the match 3-0 in just 30 minutes and thereby reach the semi-final. Abhay could be facing compatriot Veer Chatrani in the last four if Veer gets past Pakistan's Mohammad Irfan in his quarter-final later. An all-Indian semi-final would assure India at least of a silver medal. Shahid?
2: Ji, shooting ki baat ki, shooting se aapne shuruaat ki thi, achhi khabar aaj subah hi aa gayi thi. Shooting se ek aur badi khabar aane wali hai. ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा के पुरुष व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 589 जबकि नीरज कुमार ने 588 अंकों के साथ चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया। अब ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों शूटर हैं, पदक के लिए प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे यहाँ भी मेडल देखने को मिलेगा।
1: जी, और शायद कनू की दुनिया से अगर बताएं अपने मित्रों को तो कोई भी खास खबर नहीं है कनू स्प्रिंट में आज भारतीय एंगल से, क्योंकि इंडिया फिनिश्ड आउटसाइड द मेडल रेसेस इन टू इवेंट्स इन कनू स्प्रिंट। जी हाँ, भारत का सफर दो इवेंट्स के अंदर मेडल कंटेंशन से बाहर हो गया है। भारत के पुरोहित बरोई और प्रसन्न कुमार चेंपादील सत्यप्रकाश फिनिश्ड फिफ्थ इन द मेन्स कयाक डबल्स 500 मीटर सेमीफाइनल क्लॉकिंग 1:40.308 seconds। देन दे कम्पीटेड इन फाइनल बी, जहां पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम चार पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 seconds। वही वुमेन्स कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 5 pairs विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 seconds। वेल, इसके साथ ही दी इंडियन वुमेन्स कयाक 4 500 मीटर क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पम, पूजा सोनिया देवी भैरवम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 seconds। शाहिद,
2: साक्षी, टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मिवा हरिमोटो से होगा। पुरुष युगल में मानव और मानुष की भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।
1: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त। और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल, 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम। और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोवेटेड पॉइंट्स ऑफ 31 points, विच thereby helped them also get a lead in a very convincing manner in the first half over Nepal. Second half की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ। भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे। मैच ऑन गोइंग है बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस।
2: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है। उन्नति ने उत्तर कोरिया की यू सी यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी। अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा।
1: राइट, और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से भी कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स। और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का, दे लॉस्ट टू हरिमोतो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32। एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी, जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी। And our women will be making us proud once again.
2: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है। आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल वो कितनी ऊपर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर, तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: जी हाँ दोस्तों, एशियन गेम्स 2026 अपडेट्स के बाद हम आपके साथ फिर से रूबरू हो गए हैं नॉनस्टॉप गपशप के लिए। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, हम उनसे पहले बात करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हेलो
1: जी, बहुत इंतज़ार करना पड़ा एक्चुअली।
0: जी हाँ,
1: सुप्रभात। लेकिन सवर का फल मीठा होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो आपसे बात हो गई, यही संतुष्टि है।
0: चलिए,
1: शुभजीत बोल रहा हूँ बेलगरिया से।
0: शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: हर भरी नहीं है।
1: तो जो बारिश की रिमझिम बूंदे हैं उनसे आपका मुकाबला आज नहीं होगा।
0: जी, और लगातार तीन दिन से जो चल रहा था, आज थोड़ा सा सुकून है कि हमारे एरिया में एक्चुअली बारिश नहीं हो रहा है फिलहाल, लेकिन मौसम बहुत ही मतलब बहुत क्लाउडी है।
1: जी, मौसम की अपडेट्स लगातार हमें मिल रही है और हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं सपनों के बारे में, आपके जीवन का कौन सा सपना है?
0: जीवन का सपना जो है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सपनों का महत्व क्या है, कि हर इंसान को सपना देखना जरूरी है, क्योंकि सपना एक ऐसा एहसास है जो इंसान को और समृद्ध करता है।
1: बिल्कुल।
0: और बचपन में हम लोग जब सपना देखते थे, तो जब छोटे थे तो कभी लगता था कि डॉक्टर बनेंगे, फिर लगा कि नहीं नहीं इंजीनियर बनेंगे, तो सपना चेंज होता रहता था। लेकिन जब थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तब एहसास होता है कि सपना इससे भी कहीं बड़ा है, कहीं उसका महत्व अलग है। तो मुझे जब पहला नौकरी मिला तो उसका एहसास वैसा था कि एक बार इंटरव्यू दिया तो एक ही बार में मुझे मिल गया, तो रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ वगैरह। तो ये जो प्रोसेस था, हमको लगा था कि नहीं शायद काफी कसरत करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की दया से वो मिल गया। तो वो एक सपना था कि मैं एक ऐसा मतलब अपना परिवार, खुद को एक ऐसा जगह में अपना रखूं कि उनको सुख दूं। हाँ, और जो भी जिंदगी में ख्वाहिश है धीरे धीरे पूरी कर सकूं। लेकिन अभी ऐसा टाइम आया है, जबकि अभी तो मैं सेटल्ड हूं, लेकिन अभी ऐसा सपना है कि मैं सारा दुनिया घूम सकूं। ये एक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखना और अनुभव करना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर जब देखने पर मुझे ये एहसास और महसूस हो कि मैंने जीवन को सचमुच जिया है।
1: जी।
0: क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं जगह, तो सिर्फ हम लोग उसका प्रकृति को अनुभव करने नहीं जाते हैं, हम लोग उस जगह की नई लोगों और संस्कृतियों को भी जानने की कोशिश करते हैं, उसका अनुभव ले आते हैं अपने घर वापस। और ये जो यादें हम संजो के रखते हैं, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और हर इंसान को, चाहे छोटे बड़े जो भी है, एक सपना तो हमेशा देखना चाहिए कि अच्छा इंसान बने। हम कितना कमा लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना कमाए कि अपने आप को और फैमिली को और आसपास के लोगों को खुश रख सके, और हमारे हिस्से में जो भगवान ने दे दिए हैं वहीं से थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसे लोगों को दे जिनको ये चीज की जरूरत है।
1: बिल्कुल, मुट्ठी भर आसमान हम किसी को शेयर कर पाए एटलीस्ट।
0: जी, मेरा तो यही ख्वाहिश है जीवन में।
1: बिल्कुल, और आपकी ख्वाहिश पूरी हो ऐसी हम दुआ करते हैं ईश्वर से। और
0: थैंक यू, आपका भी जितना भी सपना हो आपका पूरी हो, ये मेरा भी विश है।
1: बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं यदि हमें मिलती रहेंगी तो हमारी भी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। और सबसे बड़ा सपना तो हम लोगों का ये रहता है कि हम अपने श्रोताओं के साथ पूरा कनेक्ट कर हो पाए अच्छे से, है ना?
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: लगता है कि कुछ समय जो हमने आपके साथ गुजारा है या आपने हमारे साथ गुजारा है वो खुशी में गुजरे।
0: और आकाशवाणी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी साल से इससे जुड़ा हूँ कि 90s के लास्ट में, लेट 90s में, हम लोग उससे पहले नहीं कभी सोचे कि आपके साथ, आप लोगों के साथ हम लोग का वार्तालाप जो हो सकता है। लेकिन शायद मैंने शुरुआत की 95 से, उसी के लगभग FM शुरू हुआ, आकाशवाणी ने ये इतना अच्छा स्टेप लिया, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिनके द्वारा आज हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग का विचार हम लोग साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई नहीं सोचा था कि हम लोग बातें करेंगे डायरेक्ट लाइव, ये ऐसा।
1: तो ये भी सपने के का परिणाम है ना?
0: जी, बिल्कुल।
1: ये जो विचार जिसके मन में आया, उन्होंने उस विचार को, उस सपने को हकीकत में बदला।
0: जी, और इससे क्या हुआ कि जितने भी श्रोताएं हैं उनका सोच कैसा है और प्रोग्राम्स कैसे अच्छे कर सकते हैं, आपको ज्यादा एंटरटेन कर सकते हैं। रेडियो जॉकीज जो इतने मशक्कत से, इतना कठिन परिश्रम से काम करते हैं, उनका भी फल मिलना चाहिए ना?
1: बिल्कुल,
0: होता है तो वही फल देते हैं।
1: तो बस हम लोग तो यही कोशिश करते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको पसंद आता है कि नहीं।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए।

0: शुक्रिया सविता जी आपका,
1: शुक्रिया शुभजीत। तो शुभजीत ने भी अपने मन की बात की और उनके साथ कुछ कुछ बातें हमने भी अपने दिल की कह ली। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं। और मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक मौसम की जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी कि 25 सितंबर 9:50 से अगले 2 से 3 घंटों के बीच में दौरान ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, बांकुरा जिलों के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बादलों के गर्जन और बिजली की कड़क के साथ तेज से तेज बारिश होने की संभावना है। सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं पहले एक गीत और उसके बाद हम अपने एक कॉलर लेंगे। हालांकि फोन कॉल लगातार बज रहा है तो मैं सोचती हूँ एक ले लेती हूँ। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? किसी कारण से उनकी आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं फ़िलहाल एक गीत आपको सुनवाऊंगी और उसके बाद फ़ोन कॉल।

0: जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया में कई आविष्कार सरल विचारों के रूप में शुरू हुए और लेकिन गगनचुम्बी इमारतों और हवाई जहाज को लाने वाली चीज़ उन लोगों की इच्छा शक्ति थी जिनके पास बड़े विचार थे और उन सपनों को पकड़कर उन्हें अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। हमारी जो आकांक्षाएं कल्पनाओं से कहीं अधिक हैं दोस्तों, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ ही हम उन सपनों को पूरा कर लेते हैं, उन्हें वास्तविकता में बदल लेते हैं, उन्हें हकीकत में ले आते हैं जिनको कि हम सपने बंद आंखों से देखते हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए चंचल जी, पहचान गई मैं आपकी आवाज।
1: सविता जी नमस्कार, राधे राधे।
0: नमस्कार राधे राधे, कहिए कैसे हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं बताइए।
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, और आप आ गए स्टूडियो में हमसे बात करने तो ये और भी बढ़िया बात है। बताइए
1: क्या बात है
0: बताइए।
1: सविता जी,
0: जी
1: मेरा भी एक सपना था। जब मैं रेडियो से पहले जुड़ा तो मैं आरके बनना चाहता था, इसके लिए मैंने काफी मेहनत भी की और आपके ऑफिस तक पहुंचा था मैं।
0: अच्छा।
1: डायरेक्टर से भी मिला था, उनसे बातचीत मैंने की तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी आप और तैयारी कीजिए, उन्होंने बताया मुझे। तो ऐसे ही अब मैंने इसके लिए स्टडी भी काफी मैंने की है, और जब प्रोग्राम आपका होता था आप लोगों का तो मैं सब सुनता था, और काफी तैयारी करने के बाद मैं मेरी इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई।
0: अच्छा।
1: बहुत तेज रखना पड़ता है, बहुत जो भी कहना पड़ता है बहुत चबा चबा के बोलना पड़ता है। तो मैं ये मेरा सपना, ये मैंने खुली आंख से अपना जो है सपना देखा था। खैर जो भी हो, मैं आरजे तो नहीं बन पाया लेकिन कॉलर जरूर हो गया।
0: बिल्कुल, और आप फेमस कॉलर भी हैं।
1: बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम तो मैं सुनता ही रहता हूँ, सारे दिन प्रोग्राम सुनता हूँ, रात को भी मैं रेडियो ऑन रहता है मेरा, जो भी प्रोग्राम होता है वो सब सुनता हूँ, और बाहर का भी जो प्रोग्राम होता है दिल्ली से भी वो भी सारा सुनता हूँ। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलर अब आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। और आप तो इस वक्त बिल्कुल चमकता सितारा हो।
0: अच्छा।
1: और आप बस इसी तरह बने रहिए, मैं ये मेरा आशीर्वाद है आपको, आप अच्छे से रहिए। आज का तो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा।
0: अच्छा।
1: जी
0: अच्छा,
1: बहुत सक्सेस रहा, बहुत अच्छा लगा, और सभी श्रोता जो है

0: सुनने उनको भी बहुत पसंद आया है
1: जी। शुक्रिया शुक्रिया चंचल जी। और आपके लिए मैं कहना चाहूंगी एक शेर कि कई सपने अधूरे रह गए हैं, मेरी मुट्ठी में लम्हे रह गए हैं। तो कोई बात नहीं, आपके पास ये हुनर है कि आपने उसको समझा, जाना और माना।
0: सविता जी,
1: जी
0: और एक कहना चाहता हूँ, मेरा मनपसंद गीत जो था आपने बजाई दिया, नहीं तो आपने बजाया था, ये मेरा बहुत मनपसंद गाना है, दोबारा का था ये गीत, महेंद्र कपूर लता जी की आवाज में।
1: जी जी जी जी, तो शुक्रिया। चलिए अगला गीत भी आपको पसंद आए, अगला गीत भी पसंद आए, इसकी हम कोशिश करेंगे। चलिए
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह प्रोग्राम बने रहिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। और दोस्तों, घड़ी की सुइयों पर मेरी नजर ही नहीं गई थी, फिलहाल नरेंद्र जी जी श्याम सुंदर चंचल जी से बात करते करते नज़र मेरी घड़ी पर गई तो देखा कि 10:53:56 हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है और हमारे अंतिम कॉलर से हमारी बात हो चुकी है। फिलहाल तो बस आपसे वादा करके कि मैं फिर आऊँगी, ये वादा करके मैं विदा लूँगी आपसे 11:10 पर। लेकिन मुझे सुनना ना भूलें, क्योंकि आज आपके सबके फेवरेट गायक कलाकार मोहम्मद अजीज़ की बातों का सिलसिला हमारे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में होने वाली है, और लगातार कॉलर कॉल कर रहे हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं अंतिम एक फ़ोन और उठा लेती हूँ जल्दी से झटपट बात करके। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ कौन बोल रहे हैं?
2: सपना घोष बोल रहे हैं।
1: सपना जी जी,
2: जी अच्छा है ना?
1: जी बिल्कुल बढ़िया है। और देखिए, आज हम सपने की बात कर रहे हैं और आपका नाम भी सपना है।
2: हाँ, देखिए सपना तो सबको देखते हैं, हम भी देखे हैं
1: जी,
2: मेरा एक अपना घर हो जाए, यही सपना मेरा इच्छा है
1: जी।
2: तो यही आपसे मैंने बोल रही हूँ, ये मेरा एक अच्छा घर बन जाए, तो मेरा सपना सबसे अच्छा, मैंने सबसे यही सपना मेरा है
1: जी।
2: और हर रोज हम यही सोचते हैं, और एक दिन सपना भी देख रहे थे कि मेरा अपना घर अच्छा है,
1: तो आपका घर हो ये हम दुआ करते हैं।
2: हाँ,
1: और आपका सपना पूरा हो।
2: अच्छा जी, थैंक यू दीदी,
1: थैंक यू आपके साथ।
2: बहुत अच्छा लग रहा है आपका आवाज, हमको इतना अच्छा लग रहा है ना।
1: शुक्रिया। तो अंत में आपको हमने ले लिया, वो अच्छा हुआ। ठीक है, नमस्ते। तो अंतिम हमने कॉलर अपने सपना जी को ले लिया, और देखिए चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि सुहाने सपने आए हैं, सुहाने सपने आए हैं, लुभाने सपने आए हैं, मुझे मंजिल की दावत है, बुलाने सपने आए हैं। तो सपनों को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सविता को सुनते रहिए। मिलते हैं अगले फिर प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुश रहिए।
3: आते रहे दिल लुभाते रहे।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग की खबर के साथ। बॉक्सिंग रिंग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जादे को कड़े मुकाबले में 4-1 से जो निर्णायक मुकाबला था उसमें शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत से ही सचिन ने अपनी रफ्तार और सटीक पंचों से दबाव बनाए रखा। अबू जादे ने अंतिम दौर में जोरदार वापसी की कोशिश की लेकिन रिंग में उनकी थकान साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर सचिन लगातार चुस्त दिखाई दिए और उन्होंने कई सटीक मुक्के लगाए भी और इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुंसुके कितामोतो की चुनौती होगी जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
2: राइट, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनाहत सिंह इन द वुमेन सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनाहत सिंह विद शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रिट तन्वी खन्ना डिफीटिंग अ 3-0 11-2 11-5 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट अ 30-year-old अपोनेंट। अनाहत विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको ये भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल, ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम। द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6 8-11 और आगे भी अगर बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वाश। शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वाश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स में एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहाँ पे उम्मीद रखेंगे वैशी बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिन ओपोनेंट्स 11-3 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुयोनसुके त्सुकिकी बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौटरानी इन द लास्ट फोर इफ वीर गेट्स पास्ट पाकिस्तान मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दें होने वाला नहीं है क्योंकि वीर चौटरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
1: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी लेकिन यहां पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था वहां भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे जबकि ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
2: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस quarter final round, men singles quarter finals and squash, we'll have to wait and watch as to how it turns out in the semi finals for Abhi Singh in squash up against Mohammad Irfan. Lekin ab move karenge badminton ki taraf bhi jahan Unnati Hooda began a Asian Games campaign on a winning note defeating North Korea's Ji Mi Song 21-9 21-10 in straight games. Unnati will now be facing Malaysia's Wong Ling Ching in the next round. Humne aaj din ki shuruaat mein Asian Games mein dekha kis tarah se Bharat ke individual badminton campaign jo kiski jo shuruaat hui Asian Games mein uspe Dhruv Kapila aur Tanisha Krasto ne Maldives ke Aminat अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव्स ओपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली द स्कोर लाइन बीइंग 21-8 21-7।
1: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टथलॉन होता क्या है। हेप्टथलॉन महिलाओं की 2 दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग-अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉटपुट और 200 मीटर दौड़ होती है जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
2: राइट। और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ, लेकिन देखते हैं ये सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: गाने बाजू ओने रेडियो শুনছো 107 FM রেইনবো। সাত সুরে সারা দিন, সাত সুরে সারা দিন। কালো জয় বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: KBS IG 나고야.
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे 4 गेमों में 4-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार 4 गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
2: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेंस सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद अ स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेंस सेमीफाइनल एंड थेरबाय बोथ द इंडियन टीम्स हैव नाउ put their place in the finals of the ongoing kabaddi in the Asian Games 2026.
1: Sakshi, fencing ki baat kar lete hain, Bharatiya Mahila EP team ko round of 16 mein haar ka samna karna pada hai. Uzbekistan ne kade muqable mein Bharat ko shikast dekar agle daur mein jagah bana li hai. Wahi surfing ki ek khabar de deta hu. Surfing mein Mahila shortboard round 1 mein Bharat ki Sugar Shanti Goyen ne Kamali Prakash apne apne heat mein sabse nichle sthan par rahi. Yani ye do khabrein hain lekin dono mein kuch khas Bharat ke liye नहीं है।
2: well, कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 से वो पोकेमोन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकंड वन आल्सो 1-0 अगेन टू मेक इट अ स्ट्रेट विन ऑफ 2-0। इक्वेस्ट्रियन के अंदर इंडिया हु हैड वन गोल्ड इन टीम रिसर्ज लास्ट एडिशन, मैं आपको याद दिला दे, इस बार भारत ने चौथे स्थान पर समाप्त किया है बिहाइंड चाइना, जापान और कोरिया। भारत के कुल मिलाकर जो अंक बने थे वो थे 201.971 पॉइंट्स, जिसमें श्रुति ने 68.059, हृदय ने 67.353 और जय ने 66.559 के स्कोर्स के साथ कंट्रीब्यूशन दिया। ये तीनों भारत के लिए टॉप 3 स्कोरर्स बने। गौरव, जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
1: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइनल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइनल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
2: राइट, एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40-year-old पार्टनरिंग बी Senthil Kumar, storming into the mixed double squash semi-finals with a straight game win over their Filipino opponents 11-3, 11-5. This victory assures India of at least a bronze medal in the event. Joshna and B. Senthil Kumar will now face Hong Kong's Lee Ka Yi and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow. So, here, Bharat ko ek padak to ab zarur milega. Vahin, Abhay Singh made quick work of Japan's Runsuke Sukhoi, beating him 3-0 in just 30 minutes to reach the men's singles सेमीफाइनल्स। और आपको बता दे कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना सेमीफाइनल में भारतीय अपोनेंट के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि वीर चतरानी अपना मुकाबला मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे हार गए 1-3। और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ। और अनाथ सिंह, उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाथ सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल। द 18-year-old ऑल्सो डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। शी विल नाउ बी फेसिंग जापान सतोमी वतानबे इन द सेमीफाइनल।
1: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दे, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है। महिलाओं की बात हो रही है महिला हॉकी की, जहां लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा, कोई बाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया। भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है।
2: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है इस अपडेट के अंदर, लेकिन आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत, दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। गुड बाय।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन। कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।

0: Smith also emerged as a film star with leading roles in their film franchises like Bad Boys, Men in Black, Muhammad Ali, The Pursuit of Happiness, King Richard, Independence Day, Enemy of the State, iRobo, Shark Tale, Hitch, I'm Legend, Hancock, 7 Pounds, Suicide Squad, and the most recent, Aladdin, which was released in 2019. And I know that, much like me, most of you have watched the movie, That Flying Carpet, and have appreciated the feminist view which the movie offers. That's great, and that is what is different from the previous one. Well, some unknown facts about Smith that I would share with you today is that Smith began rapping at the age of 12. When his grandmother found out a notebook of lyrics in which contained curse words, which is, you know, a significant inclusion in the African-American diasporic literary cult, she wrote him a note in the book. It said, "Dear Willard, truly intelligent people do not have to use words like this to express themselves. Please show the world that you're as smart as we think you are." This note from his grandma influenced his decision to avoid profanity in his music. That is what Will Smith has expressed in one of the interviews. Well, this is a very important part of our life. Today's generation, and I don't think just today's generation, I think that most of the people, they think that cursing is cool. Cursing makes you look smart. But let me tell you, it makes you look out of control. And being out of control is nothing to be proud of. You do not go by the conventional Puritan traditions, that's fine. But the having control on yourself is the best thing that you can gift to the world and to yourself. Yes, there are unpleasant situations. There are ways in which. IG Nagoya.
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस समय यहाँ मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी. घड़ी में बज रहे दोपहर के 1:30. हम लेकर आ गए आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स. या सबसे पहला अपडेट आपको देने वाले हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहां वुमेन्स डबल्स के हमने आज मुकाबले देखे, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास आप सबको देने के लिए, क्योंकि वुमेन्स डबल्स का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास डिड ट्राई टू पुट अप अ फाइट against Man Kuai and Wang Manu, but ultimately their opponents were just too good for them, and as a result Shreeja Akula aur unke sath sath Cinderella Das lost the game 3-0. Matlab bahut hi dominating a confident jeet samne se unke opponents ne aaj Shreeja Akula aur Cinderella Das ke upar hasil kari. Dusri taraf Yashaswini Ghorpade and Diya Chitale lost 0-3 to China's Wai Chen and Shuhan Fan. The Indian pair went down 7-11, 5-11, 8-11 with the Chinese duo taking control early in the third game and opening up an 8-11 lead before India tried to fight back, but it was just too late. Aur din ki shuruaat mein humne dekha tha ki kaise Manu Shah also got the job done against Iran's Benjamin Faraji, sealing a convincing 4-0 victory. That was a good news that came around in table tennis. Aur uske sath sath, lekin uske baad aur koi good news humne mili nahi thi. We had the mixed doubles pair of Manav and Manush, who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan. Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza, jo to reach the round of 16 in Asia games. And the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals. Big news that came in was that Jia Chitale and Manu Shah who have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully, and yahan par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad एक पदक अपने नाम मिले, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टिल टू अर्ली शायद टू इवन से दैट.
2: इधर बैडमिंटन की बात कर लेते हैं साक्षी. बैडमिंटन में जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है. भारत का जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है. हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है. एशियन गेम्स का जो पुरुष युगल का मुकाबला, भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन रिजा स्कूल और पिराचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है।
1: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया। एशियन गेम्स लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडिया लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल। कोबाई खावा शीहू पुल्ड वन पैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन। ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई। और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द विमेंस हॉकी मैच।
2: महिलाओं की बात आपने की तो यहाँ डबल्स की, मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा। बैडमिंटन की खबर है, भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो है 21-21 की बराबरी पर अभी मुकाबला जारी है। यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीत कर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है, आने वाला कुछ समय ही बता देगा आपको।
1: जी, और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी आपको अपडेट देते थे कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के ये लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना जापान कोरिया। प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज, भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स एंड एज अ रिजल्ट इट वाज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर्स टू इवन स्टैंड इन कॉम्पिटिशन विद द अदर कंट्रीज। शायद
2: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहाँ आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है। बात सर्फिंग की कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ, हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा जो सर्फिंग से खबर है, किशोर कुमार ने हीट जीतकर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है। भारत के किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई। उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला है, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है।
1: जी, और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी की नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी। शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरुचि सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड। और इंडियन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं, उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें एक मेडल तो डेफिनेटली, अब यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है। इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
0: वेल, दैट वाज एन अपडेट फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026। Fine, though my speech was cut short, my talk with you was cut short, but it's okay. We need some updates of the game, what's going around in the world. So, because it's the Asian Games and we are in the fervor of winning and losing, it's okay. Even if we lose, we at least participated. And if we win, it's definitely a win. So, it's a win-win situation both ways. DNA More Than a Game, just celebrating this fervor of the Asian Games.

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: सारे तड़के जो ना दुनिया के, वो सारे के सारे फेल। ये जो बारिश जाते जाते जिस तरह का तड़का लगा रही है, मौसमी तड़का इसको कहा जाएगा, कि मतलब झमाझम झमाझम झपझप झपझप। अब किसी भी तरह कि आप इसको आख्या दे, किसी भी तरह से इसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, बस एक ही बात जो है वो मन में आती है कि जैसे कोई एक बहुत ही स्वादिष्ट सी चीज़ पकने के बाद उसके ऊपर जो तड़का लगाया जाता है ना, उसका जो अलग फ्लेवर होता है वो एनहांस करता है उस डिश को। वैसे ही जाते जाते ये जो बारिश है, ये मॉनसून की जितनी भी डेफिसिट रही उसको ये भर दे रही है, एनहांस कर रही है, अपनी गुणवत्ता को दिखा रही है कि देखो मैं बारिश हूँ और मैं जमकर बरसती हूँ। इस बार कम बरसी, तुम लोगों को ऐसा अगर लगता है तो तुम्हारी जितनी भी गलत फहमी है उसको मैं दूर किए देती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज फिलहाल यहाँ अभी एफएम रेनबो पर तड़का तो मैं ही लगाऊंगी, चैनिका है आपके साथ, और बातें होंगी सिनेमा की। सिनेमा वाला तड़का है ये, आप जानते हैं, आपका पसंदीदा मैटिनी शो, आप सुन पाते हैं इसे 107 एफएम रेनबो कोलकाता पर। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है 3:36, एकदम सही समय। और शुरू करते हैं बिना समय जाया किए सिनेमा की कौन सी बातें हैं, कौन सी चिड़िया ने कौन सी खबर मुझे दी, वो सब की सब आपके साथ में साझा करूंगी। तो भैया सबसे पहले ये कि हम जानते हैं कि आलिया भट्ट के कई अवतार हैं, वो न केवल एक अभिनेत्री हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्में बनाती हैं। तो एक उनकी फिल्म जो है वो OTT पर फिलहाल आज ही के दिन रिलीज हो रही है, या हो चुकी है अगर आप यूं कहें। नाम है इसका डोंट बी शाय। और इसका एक झटपट ओवरव्यू आपको अगर मैं देना चाहूं तो श्रीति मुखर्जी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, आलिया भट्ट ने अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म में नजर आ रहे हैं आरुषि बजाज, अंश दुग्गल, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अनुराग बासु। प्लॉट जो है वो थोड़ा बस शॉर्ट में बता दूं कि शामिली शाय दास एकदम से मुख्य किरदार है इस फिल्म का, जिसकी जो पूरी लाइफ है ना वो एकदम मैप्ड है, एकदम विजन बोर्ड पर उसको पता है कि उसको कौन सी उम्र में क्या करना है, एकदम सेट है उसके सामने सब कुछ। बहुत ही एक किसे कहना चाहिए कि पैसे वाला बिलियनर बॉयफ्रेंड है, इसके अलावा लाइफ भी सेट है, लेकिन होता ये कि रियलिटी में कुछ और होता है, आप सोचते कुछ और, कुछ और होता है। तो यहीं से फिल्म टर्न लेती है जब उसका जो प्रियतम है वो उसको डंप करता है। उसके बाद जिस तरह से उसने पूरी एकदम डिटेल में प्लानिंग की थी अपनी लाइफ की, वो लाइफ जो है बिखर जाती है। यही है कहानी। तो प्लॉट थोड़ा सा घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन अगर हम क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें फिल्म की, तो आरुषि बजाज की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स बहुत प्रेज कर रहे हैं, एनर्जी उनकी बड़ी इन्फेक्शस है और कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है। फिल्म में राम संपत का संगीत है तो ऑब्वियसली गाने अच्छे हैं, वाइब्रेंट और बहुत यूथफुल है। और जेनजी को जब टारगेट किया है, ऑडियंस जेनजी है इस फिल्म की मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं, तो मतलब उन्हीं के लिए बनाई गई तो उसी तरह की एक फिल्म है। अगर आप भी देखना चाहते हैं, अपने आप को जेंजी समझते हैं या खुद हैं आप जेंजी, तो ज़रूर देखिएगा ये फिल्म डोंट बी शाय। और फिर सोचिएगा मन ही मन की कैसी लगी आपको ये फिल्म। फिलहाल तो आलिया की एक फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाती हूँ, उन्हीं की आवाज़ में, वो गाती भी हैं, हम जानते हैं ये। डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एकल बालिका के लिए CBSE योग्यता छात्रवृत्ति योजना के बारे में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मेधावी एकल बालिका छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो अपने माता पिता की एकमात्र संतान है और जिन्होंने CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा 60% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है और 11वीं और 12वीं की अपनी आगे की स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में माता पिता के प्रयासों को पहचानना और मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना। छात्रवृत्ति की दर ₹500 प्रति माह है। इस योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की भुगतान अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए होगी और भुगतान ECS NEFT के माध्यम से संपन्न की जाएगा और शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षण शुल्क जो है वो 1500 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में ऐसे विद्यालय में शिक्षण शुल्क में कुल वृद्धि शुल्क के 10% से अधिक नहीं होगी। छात्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान की जाएगी। और एक बात, आवेदक अपने परिवार की एकल बालिका होनी चाहिए। आवेदक को CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, और स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं का अध्ययन वो कर रही है, ये भी लाजमी है। शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षण शुल्क, जैसे कि मैंने कहा, 1500 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो बातें हैं, ये अगर सारी की सारी मिल जाती हैं

0: तो आप आवेदन कर सकते हैं इस छात्रवृत्ति के लिए। आवेदन करने के लिए क्या करना है, www.cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने बात की एकल बालिका के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना के बारे में।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

और अच्छी अच्छी फिल्में देखकर दिल जो है वो और अधिक दीवाने हो जाते हैं, या कभी कभी सयाने भी हो जाते हैं। वैसे ये आपको झटपट अगर मैं कुछ बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हनुमान अंश की, जिसने लोगों को दीवाना तो नहीं बताया लेकिन मोटिवेट जरूर किया है। उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है फिल्म और अब सिनेमाघरों में अपने 48वें दिन में पहुंच गई है फिल्म। शोभिनव सत्या की लीड रोल वाली इस आध्यात्मिक बायोपिक ने शुरुआती हफ्तों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार जो है वो बनाए रखी है और फिल्म का ये सफर जो है वो काफी अनोखा रहा है। खासकर इसकी धीमी शुरुआत को देखते हुए किसको पता था कि इतना अच्छा बिजनेस करेगी ये, और फिल्म के तीसरे हफ्ते से जबरदस्त उछाल आया और चौथे पांचवें छठे हफ्ते में भी इसमें काफी बढ़ोतरी जारी रखी है और 280 करोड़ का आंकड़ा अभी डोमेस्टिक की अगर हम बात करें मार्केट की तो इसने पार कर लिया है। और मिर्जापुर द मूवी के बारे में भी बताना चाहूंगी, तीसरे बुधवार को करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की है जो पिछले दिन के मुकाबले लगभग 12% कम है और अपने सफर के एकदम आखिरी पड़ाव पर है ये फिल्म। ये लगी रहा है बिना किसी स्टार वाले फिल्म के लिए एक अच्छा कलेक्शन है। वैसे जितने भी अभिनेता हैं इस फिल्म में वो तो अपने आप में स्टार हैं ही, OTT का बहुत बड़ा नाम है मिर्जापुर, हम सब जानते हैं ये। और चलते चलते एकदम अंतिम खबर वो ये कि 2025 की सुपर हिट रोमांटिक फिल्म सैयारा से रातों रात बड़े बड़े स्टार्स बन गए। आहन पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी जो है वो एक बार फिर से साथ आने वाली है। मोहित सूरी अपनी अगली निर्देशित फिल्म के लिए दोनों नए कलाकारों को एक बार फिर से साथ लेकर आ रहे हैं। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, शायद 2027 में ये फिल्म रिलीज भी हो जाए। अच्छी खबर। चलिए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में और ठीक 3:30 पर हम सुनेंगे विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिलहाल चैनिका है आपके साथ, तो अन्य फिल्म रेनबो कोलकाता 3 का तड़का यही समाप्त करेंगे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया।

0: फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
1: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
0: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
1: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
0: जी।
1: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
0: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
1: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
0: जी।
1: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
0: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
0: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
1: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।

0: चिड़ी ने कहा,
1: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: और आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। शीर्षक है द रेस।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के सारे पशुओं की एक मजेदार दौड़ के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें प्रतियोगिता को खेल भाव से स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
2: You must have heard of the race between the rabbit and the tortoise. Have you heard of the race between a rat and a rabbit? Let me tell the story of the race. Every evening, the animals of Machlipatti used to sit under the banyan tree. One day, Coco, the rabbit, was feeling bored.

0: over Coco's shoulder and touched the neem tree first. He shouted, "I have won the race! I have won the race!" Everyone cheered for Choo Choo.
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह सुंदर कार्यक्रम, शीर्षक था द रेस। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भला कौन।
2: श्रोताओ, वैसे तो दुनिया में सबके अंदर कोई न कोई भली बात या भलाई छुपी रहती है, लेकिन हम आज जानेंगे कि सबसे भला कौन है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भला कौन।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आज के शाम 4:30 बजे आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आपको हम दे सकते हैं वो एथलेटिक्स की दुनिया से, बिकॉज एथलेटिक्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं और उसके अंदर द बेस्ट न्यूज दैट हैज कम इन फॉर अस राइट नाउ इज दैट मनप्रीत कौर हैज गॉन ऑन टू विन ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन द शॉर्ट पुट इवेंट, in the women's shot put event. Ji haan, she has won bronze for India with the best throw of 70.

0: 16.17। आपको बता दें कि मनप्रीत कौर का जो पहला अटेम्प्ट था वो 16.32 का था, सेकंड अटेम्प्ट 16.41, थर्ड अटेम्प्ट 16.80, चौथा अटेम्प्ट 17.17, पांचवा अटेम्प्ट 16.75 और छठा अटेम्प्ट था इनवैलिड। छठे अटेम्प्ट के बाद वो काफी निराश भी दिखी थी बिकॉज उनको लगा था कि शायद वो अपना छठा अटेम्प्ट सबसे बेहतर कर पाएंगी, लेकिन क्योंकि वो इनवैलिड हो गया तो शी हैड टू सफाइस विद 17.17 व्हिच थेरबाय हैज गिवन इंडिया इट्स ब्रॉन्ज मेडल एंड विद दिस द टोटल नंबर ऑफ मेडल टैली आल्सो ऑफ इंडिया हैज गॉन अप टू 21। चाइना ने लिया गोल्ड इसमें और सिल्वर दोनों ही। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर जो है वो 100 मीटर्स के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने 10.32 सेकंड्स का टाइमिंग क्लॉक किया और अनिमेश कुजूर ने 10.38 का टाइमिंग क्लॉक किया, और इसके बाद क्योंकि वो अब सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो चुके हैं, निराशाजनक खबर, भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है शायद 100 मीटर्स के आगे इस रेस के अंदर, अब फाइनल्स के अंदर।
1: जी बिल्कुल, अब बताना चाहूंगा बैडमिंटन की खबर है। हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो बेहद खास खबर है। एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग ह्यू यान और लुई लोक लोक की जोड़ी से हुआ था। टिसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टिसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। अब राउंड ऑफ 16 में टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसू मासुमो की जोड़ी होगी, यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के सामने दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलने वाली है।
0: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने। लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पित तसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेयर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, थेरबाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया। तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स।
1: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं। ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में भारतीय तैराक जो ऋषभ दास हैं, उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है, लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसे तोड़ दिया। 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज्यादा का सुधार किया। वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे।
0: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। जी हाँ, मनुष शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वांग चू क्वीन एंड सुन यिंगशा इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हाँ कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे। कंप्लीट डोमिनेशन उनका देखने को मिला भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, प्रिटी मच गोइंग बाय द विद द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द एंटायर गेम in four entire match in four straight games, making the lead to be 4-0 and thereby settled in with the bronze medal. So congratulations to the Indian mixed doubles team who got us the bronze today in India.
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई थी लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है। उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहां भी कुछ अच्छी खबर आए। फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: ও অন্যান্য বিষয়গুলো উল্লেখ করবেন। অভিযোগকারীদের অবশ্য তাদের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। অভিযোগপত্রটি যোগাযোগ ভবনের ঠিকানায় 30/9/2026 তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। শ্রী এস সি দাস ADPS CS মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল P-36 CR এভিনিউ কলকাতা 712 এই ঠিকানায়। ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ইমেল করতে হবে cpmg_wb@india-post.gov.in এই ইমেল আইডিতে, অথবা adpgcowb@gmail.com অথবা pgwb@indiapost.gov.in এই আইডিতে। অভিযোগকারীকে উপরোক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ডাক আদালত ও পেনশন আদালতে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হবে। যে কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য ADBPCS এর সঙ্গে যোগাযোগ করার টেলিফোন নাম্বারটা একটু শুনে নিও। 0332210250 0332210612 আরেকটি নাম্বার 0332210500 এই নাম্বারে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ডাক আদালত ও পেনশন আদালতের জন্য প্রতিটি অভিযোগ ইমেল ডাক আদালত পেনশন আদালত শব্দটি উল্লেখ করতে হবে। দ্রষ্টব্য আইনি বিষয়ে জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়ের উপরোক্ত ডাক আদালত ও পেনশন আদালতে বিষয়গুলি নেওয়া হবে না। ঘোষণাটি শেষ হলো।
1: গানে বাজুক মনের রেডিও শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন। তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেইনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।
0: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 20th এশিয়ান গেমস 2026 এর পিরিয়ডিক FM আপডেটস কিন্তু দিল্লি থেকে সরাসরি তোমাকে শোনানো হবে। এবং তারপরে ঠিক 6:35 আরও একবার আমরা ফিরে আসব 107 FM রেইনবোতে।
2: সুতরাং এই মুহূর্তে যখন ঘড়ি বলছে 5:29 হয়ে 34 সেকেন্ড, অলরেডি হয়ে গেছে 9903655992 ইজ আওয়ার নাম্বার, এবং এই নাম্বারটাও কিন্তু খোলা রয়েছে। বাস এবং লরির পেছনে অদ্ভুত অদ্ভুত যে সমস্ত লেখাগুলো থাকে সেগুলো নিয়েই কিন্তু আমরা কথা বলছি তোমার সঙ্গে। সুতরাং স্টে কানেক্টেড, 6:30 পর্যন্ত অমরজিৎ এবং মহুয়া রয়েছে ঠিক তোমার সঙ্গে 107 FM রেইনবোর উইকেন্ড ক্যাফেতে।
3: ২০২৬ की अपडेट का
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
5: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहां वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत कौर हैज बॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। जी हाँ, विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स मनप्रीत कौर ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। इसके साथ ही भारत अब मेडल टेबल में कुल मिलाकर 21 मेडल्स कमा चुका है। चाइना ने दोनों ही गोल्ड और सिल्वर अपने नाम कमा लिए इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट। आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे। गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल। आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं। गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 मीटर के अंदर। अनदर medal coming for India, and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon, mein aapko bata de, Pooja finished in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds, while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin unke efforts kafi nahi the, Pooja isi wajah se 6th spot par finish kiya unhone heptathlon ke andar, wahi Anamika ne 8th sthan par khatam kiya. Aur last mein chalte chalte एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क. शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन टू अटेम्प्ट्स बिफोर आल्सो मिसिंग आउट एट 4 मीटर्स. शाहिद
6: जी बिल्कुल, अभी आपने गुरवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है. मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं. एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था. जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है. इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था. अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था. इससे अंदाजा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था. वहीं एक और खबर दे दे बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया. 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.
5: जी और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया. लाल रेम सियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडिया लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द थर्ड गोल. और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमी फाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ, एंड उसके बाद भारत का सामना या भारत भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर.
6: जी बिल्कुल देख सकेंगे. और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है.
5: ऑफकोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है, क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे. तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वाश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी, बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में, विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आगे बढ़ गए. और अब यहां से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही यहां पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहां पर वीर चौटरानी, जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3. अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेंस सिंगल्स. यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेंस सिंगल्स के प्रवेश किया, और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से.
6: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी साक्षी मांडवाल को इस घंटे के अपडेट के साथ इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
1: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi. Tumi Shuncho Weekend Cafe. 107 FM Rainbow Te. Weekend Cafe. Weekend Cafe.

0: 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। एथलेटिक्स में भारत के लिए बड़ी खबर आई है। बारानिका एलंगोवन ने एशियन गेम्स 2026 की महिला पोल वॉल्ट में, जो पोल वॉल्ट की स्पर्धा होती है, उसमें कांस्य पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास गढ़ दिया है। बारानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की। कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की। दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया। इस उपलब्धि के साथ वरानिका एलंगोवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए यह एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
2: जी शायद, थैंक यू सो मच। और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि विम्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है विम्स 400 मीटर फाइनल्स के लिए आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन अ हीट इन 53.46 सेकंड्स। शी एडवांसेस एज वन ऑफ द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट रनर्स आउटसाइड द टॉप टू फिनिशर्स इन द थ्री हीट्स। ईरान जहरा विंस द थर्ड हीट इन 52 सेकंड्स। अर्लियर इंडियाज किरण हैड फिनिश्ड सेकंड इन अ हीट इन 53.44 सेकंड्स टू क्वालिफाई डायरेक्टली। ये भी आपको बता दें कि द टॉप टू फिनिशर्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री हीट्स क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर द फाइनल विद द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट एथलीट्स अक्रॉस ऑल थ्री हीट्स आल्सो एडवांसिंग। वहीं मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। वेल, द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल। विशाल पिप्स कतार अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स। इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स। शाहिद
1: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक पर चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:29.38 सेकंड का समय निकाला। वहीं बहरीन के बिरहानु बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा, जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझाऊ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है। गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। खास बात यह कि आईची नागोया एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता। महिलाओं के 10,000 मीटर में, जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला। पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ है।
2: हां जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स। यस, इट वाज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड, बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी। चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पे प्राप्त हुआ। मनप्रीत कौर के नाम रहा आज का ब्रॉन्ज मेडल। एंड आपको ये भी बता दे कि दिस डेफिनेटली, ये इस जीत के साथ उस समय भारत के हो गए थे 21 मेडल, लेकिन क्योंकि उसके बाद भारत का और मेडल भी आ गया एथलेटिक्स में, तो भारत की मेडल टैली राइज होकर बढ़ गई टू 22 मेडल्स। बट एक और चीज, मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल के अंदर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 10.32 सेकंड्स की टाइमिंग रही गुरिंदर वीर सिंह की और अनिमेश कुजूर की टाइमिंग रही 10.38 सेकंड्स की। सो दैट वाज एन अपसेटिंग डिफीट, और शुड वी से एन अपसेटिंग न्यूज, बिकॉज इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस 100 मीटर्स टुडे। शाहिद
1: जी, आपने मेडल टेबल की बात की, भारत की बताया, जहां पर भारत ने 2 गोल्ड 9 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक। वहीं अगर मेडल टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर अभी भी चीन बना हुआ, 97 गोल्ड 36 रजत पदक है। इसके अलावा 24 कांस्य पदक सहित 157 पदक जीतकर सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना, जबकि जापान की बात करें 27 स्वर्ण 42 रजत 44 कांस्य सहित 113 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक, 34 कांस्य समेत 64 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है।
2: जी थोड़ा सा खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है कि अगर हम देखें पीपल्स रिपब्लिक चाइना has got 97 गोल्स, we'll talk about that शायद in the next update, because अभी वक्त हो गया है अपने सारे दोस्तों से विदा लेने का। मैं साक्षी मांडवाल और शाहिद आजमी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, आपके साथ एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे आज के दिन की आखिरी अपडेट के साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम आकाशवाणी ब्रिंगिंग टू यू द ऑन ग्रीन एशियन गेम्स 2026। थैंक यू सो मच।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।

0: Android Super Hits.
1: आजकल जिस तरह की कहानियां हम देखते हैं OTT और सिनेमा के पर्दे पर, कहा जाता है कि आजकल हिंदी हार्टलैंड की कहानियों की जबरदस्त मांग है. और दिक्कत यह है कि बहुत सारे ऐसे फिल्मकार हैं जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली ये हार्टलैंड कहाँ है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो हार्टलैंड है, ये मेरा और आपका दिल है, यानी दिल की दुनिया है. आम आदमी, मेरे और आपके जैसे, जो इंसानी रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, जो अपने दूर जाते बच्चे के लिए रोता है, जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है उसके लिए आंसू बहाता है, वो जो अपने गुजर चुके माँ बाप की बरसी पर हर साल उदास हो जाता है, जो अपने बचपन के दोस्तों को याद करके गमगीन हो जाता है, तो ये है दिल की दुनिया, हार्टलैंड. अगर मैं इस तरह से इसको डिफाइन करूं, तो ऐसी फिल्में न जाने कब से बनती आ रही हैं हिंदी फिल्मों की दुनिया में. और आज चलिए ना सेल्युलॉइड सुपर हिट्स में ऐसी फिल्मों की ही हम बात करें. फैमिली ड्रामा फिल्म्स आज के इस पहले घंटे का विषय, छायालोक का ये पहला घंटा चयनिका के साथ आप सुनेंगे. 7:12 और 25 सेकेंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय. और आशा भोसले की आवाज़ में हमने कार्यक्रम का पहला गाना सुना. BR फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी, याद है ना आपको, वक्त फिल्म का ये गाना. साहिल लुधियानवी का गीत है और रवि ने संगीत दिया था. और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ एक चुनिंदा ऐसी ही फैमिली मूवीज़ की हम बात करें.

ये वक्त भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जहाँ पर हम देखते हैं कहानी एक परिवार की, बड़े से परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ तीन बेटे हैं, माता पिता हैं, और किस तरह से वो बिछड़ जाते हैं और जिस तरह से कहानी प्रोग्रेस करती है, बिछड़े हुए ये जो फैमिली मेम्बर्स है फिर एक साथ हो जाते हैं, इस तरह की कहानी थी मल्टी स्टारर एक फिल्म। तो ऐसी कई सारी फिल्में जहाँ इंसानी रिश्तों को तवज्जो दी गई है कहानी में, ऐसी फिल्में बनी हैं। तो अब जिस फिल्म की मैं बात करूँगी वो ऐसी ही एक हार्टलैंड वाली कहानी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ही मध्यम वर्गीय परिवार दिखाया गया है जो छोटी छोटी बातों पे तकरार कर बैठता है, मन मुटाव कर बैठता है। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन रहता है एक ही छत के नीचे। बात कर रही हूँ मैं गल्पो होलो सत्यि बांग्ला फिल्म की हिंदी रीमेक बावर्ची की। 7 जुलाई 1972 को पहली बार ये बड़े पर्दे पर दिखाई दी, रिलीज हुई। और बावर्ची के जो हीरो हैं वो है राजेश खन्ना, लेकिन मजे की बात ये कि उनकी एंट्री होती है फिल्म में तकरीबन 25 मिनट या आधे घंटे बाद, और उससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी अपने हीरो के लिए एक, जैसे मान लीजिए एक स्टेज सा बनाते हैं, और ये फिल्म भी वैसी एक थिएट्रिकल बिगिनिंग है इस फिल्म की, जहाँ पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, धीरे से आवाज़ आ रही है पीछे से अमिताभ बच्चन की नेपथ्य से, और सारे जो कलाकार हैं उनका परिचय करवा रहे हैं, और ये बड़ा ही अद्भुत सा एक एक्सपेरिमेंट था मुझे लगता है उस दौर में। और उसके बाद मतलब सूत्रधार जैसे किरदारों का परिचय करवाता है उस तरीके से, और उसके बाद हर पात्र अपना अपना एक अलग पसौना लेकर हाजिर होता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी मुझे लगा कि ये कहानी है, तो वैसे हालांकि रीमेक, लेकिन इतना अच्छा, इतना सधा हुआ एक अप्रोच ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म में मिलता है, इस फिल्म में भी हमने वही देखा था। और इससे पहले कि बावर्ची का गीत मैं आपको सुनवाऊं, एक ही घर में सिमटे हुए पूरे भूगोल को, मतलब कितने कितने तरह के अलग अलग मिजाज के पर्सनैलिटी के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहने लगते हैं, पहले एक दूसरे के साथ मनमुटाव होने के बाद भी। तो वहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी बात गुलजार के एक संवाद में है, जो लिखते हैं कि इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। ये अगर किसी के जीवन का मोटो हो जाए तो मुझे लगता है कि मतलब आधी समस्याएँ तो फिर ऐसे ही मतलब आप निपटा सकते हैं। ये सोच अगर अपने अंदर हम बिठा लें, सिंपल होना डिफिकल्ट होता है वैसे, है ना। कोशिश करके कभी देखिए। फिलहाल तो इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सबकी नजर करना चाहूंगी। आज हम सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स में फैमिली ड्रामा फिल्म्स के कुछ खूबसूरत से गाने।

0: Tabloid Super Hits.
1: अभी अभी जो गीत हमने सुना वो लिखा था कैफी आजमी ने और संगीतकार हैं मदन मोहन. और बावर्ची की बात हमने की तो इसी तरह की कुछ और फिल्मों के बारे में भी आज हम बात करेंगे. आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को जिक्र करना चाहूँगी अब पिया का घर फिल्म का. और 1972 में ये फिल्म बनी, कह सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी. बासु चैटर्जी ने इसका निर्देशन किया था. राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी और मुख्य भूमिकाओं में अनिल धवन और जया बच्चन नजर आए थे. लेकिन आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि मुख्य भूमिका के लिए यानी अनिल धवन वाले किरदार के लिए अमोल पालेकर पहली पसंद थे और कुछ एक गलत फहमी हुई और उस वजह से बासु चैटर्जी ने उनकी जगह अनिल धवन को कास्ट किया. अब देखिए कौन सी फिल्म किसके नसीब में लिखी है. ये नसीब नसीब की बात, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो पहले किसी और को ऑफर होती हैं, किसी एक अभिनेता को ध्यान में रखकर कहानी लिखी जाती है. निर्देशक जो है वो सोचता है फिल्म को लेकर, लेकिन उसके बाद होता ये है कि जिसको ये फिल्म मिलनी है उसी को अल्टीमेटली मिलती है. बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं या फिर इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो खैर अनिल धवन को ही इस फिल्म में अभिनय करना था तो उन्होंने किया. और ये भी एक रीमेक है, राजा ठाकुर की मराठी फिल्म मुंबई चा जवाई की रीमेक थी ये फिल्म. और यहाँ देखा है हमने कि एक महानगर में जो जीवन है वो कितना कठिन होता है, उसको एक कॉमिक एक एंगल दिया है, एक पारिवारिक नाटक के रूप में ये फिल्म हमें लगती है, दिखती है. बहुत खूबसूरत एक फिल्म जहाँ पर जो नई नवेली दुल्हन है और वो यहाँ पर आकर एडजस्ट करी, किस तरह से जो जोड़ा है नव विवाहित जोड़ा, वो थोड़ी सी इंटिमेसी चाहता है, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन इतने छोटे से घर में इतने लोग एक साथ रहते हैं वो संभव नहीं हो पाता. किस तरह से बहुत ही खूबसूरती से इस मैटर को इस फिल्म में एड्रेस किया है निर्देशक ने, और कैसे फिर अंत में सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं. और यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है. किशोर कुमार की आवाज़ में चलिए सुनते हैं ये गाना जो इस फिल्म को बड़ी ही खूबसूरती से समेट लेता है, समाप्त करता है. आप सबके लिए पिया का घर का ये वाला गाना.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स। सेल्यूलॉइड सुपर हिट सुन रहे हैं आप आज चैनिका के साथ, और हम ऐसी फिल्मों की बातें आज कर रहे हैं जो परिवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है, जिनकी कहानी एक परिवार के आसपास। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत पुराने समय से ऐसी फिल्में हमने देखी हैं जहां इंसानी रिश्तों को, जिन कहानियों में अहमियत दी गई है, किस तरह से हम सारी उम्र जो है वो नर्चर करते हैं अपने रिश्तों को और उन्हीं के सहारे पूरी जिंदगी जो है वो काट देते हैं। आज ऐसी ही इंसानी रिश्तों की बातें, ऐसी रिश्तों वाली फिल्मों की बातें सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स के अंतर्गत चैनिका है आपके साथ। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गीत सुना, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है उसमें, ये जीवन है पिया का घर फिल्म से मैंने आपको सुनवाया। और अब समय हो चला है कि हम चलें एशियन गेम्स की अपडेट्स की ओर। ये अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हम आपको रोजाना शाम 7:30 पर अभी फिलहाल छायालोक के दौरान दिल्ली लिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं एशियन गेम्स के अपडेट्स की खबर लेने शाम 7:30 में, यानी कुछ ही देर में, और उसके बाद मैं लौटूंगी 7:35 पर कार्यक्रम छायालोक सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स का दूसरा भाग लेकर। सुनते रहें

0: भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वुड टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स आल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट शायद टुडे।
1: जी बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बनाने का एंग लेगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स के खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
0: जी, और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज़ बता दी कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी लॉस्ट टू पाकापोन एंड पीरताचाई सुखपोन 1-2 ऑफ थाईलैंड इन द मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे वर द मेडल कंटेंडर्स एंड वी वर कीपिंग आवर होप्स अलाइव फ्रॉम दिस डू ऑफ इंडिया, बट थिंग्स डिड नॉट गो अवे। वेटलिफ्टिंग के अंदर भी निरुपमा देवी फिनिश्ड 8th इन द वुमेन 61 किलोग्राम कैटेगरी, अनदर हार्ट ब्रेक ओवर देयर। उसके साथ साथ हम बताते हैं इक्वेस्ट्रियन में, जहां पिछली बार भारत को गोल्ड मिला था, आज उसमें गौरव पंडीर, हृदय विपुल चड्डा, श्रुति बोरा एंड जय सूद रन आउट ऑफ मेडल प्लेसेस इन द टीम फाइनल। टेबल टेनिस में मानु शाह बीट फराजी बेंजामिन मिक्स सिंगल्स राउंड 2 मैच। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इट वॉज अ मिक्स डे ऑफ मेडल्स दैट वर पोरिंग इन, बट on a lighter and a better note we can also end the day with the overall medal tally in which india is standing right now. bharat ki standing agar baat kare to bharat is samay hai 12ve sthan par on the medal position with a total of 22 medals, jisme do gold aa chuke hai cricket aur shooting ki badolat, 9 silver hai, jo 9 silver hai uspe 5 shooting se aaye, 1 weightlifting se, 1 वुशु से, 2 एथलेटिक्स से, 11 ब्रॉन्ज है भारत के पास, जिसमें से 4 शूटिंग के हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट, 1 सॉफ्ट टेनिस, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस।
1: जी, और सबसे ऊपर चीन बना हुआ 98 गोल्ड के साथ 100 यानी शतक लगने वाला है, 37 उसके सिल्वर मेडल जबकि 24 उसके कांस्य पदक। वहीं जापान 28 गोल्ड, 43 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज समेत 115 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज समेत 64 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: जी, आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अभी मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम एक बार फिर कल सुबह आपके साथ 9:30 आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे टू ब्रिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: You are listening to the Asian Games 2026 updates. This is FM Rainbow 102.6 MHz.
4: बच्चों के तेज दिमाग

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स, जैनिका के साथ सुन रहे हैं आप सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स छायालोक का ये पहला घंटा बीत चुका है। आधा समय, आधे से ज्यादा समय, अभी फिलहाल 7:37 और 50 सेकंड

एकदम सही समय बता रही है हमारे स्टूडियो की घड़ी, और आज हम बातें कर रहे हैं फैमिली ड्रामा फिल्म्स की। और 70 के दशक की कुछ फिल्मों की बात अभी फिलहाल हुई, हमने बावर्ची का गीत सुना, पिया का घर फिल्म से गीत सुना, वक्त का गीत भी सुना, 60 के दशक की वो फिल्म थी। और अब एक और 70s की फिल्म का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी, मतलब फैमिली मतलब डबल बोनांजा फैमिली, दो बड़ी बड़ी फैमिलीज जब एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, ये हमने देखा था 1978 की फिल्म खट्टा मीठा में। ये भी बासु चटर्जी की ही फिल्म थी, अशोक कुमार, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, पर्ल पद्मसी, देवेन वर्मा, डेविड इब्राहिम, रंजीत चौधरी, प्रीति गांगुली, प्रदीप कुमार और इफ्तिखार मुख्य भूमिकाओं में हमें नजर आए थे। राजेश रोशन का बहुत ही बेहतरीन संगीत था और 26वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में देवेन वर्मा को हास्य अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन भी मिला था इस फिल्म के लिए। और ये कहा जाता है कि गोलमाल 3 जो थी 2010 की फिल्म, खट्टा मीठा से ही प्रेरित थी। और ये फिल्म हालांकि बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं थी, एवरेज हिट फिल्म थी ये, लेकिन इसकी कहानी और सादगी जो है उसको दर्शकों ने, समीक्षकों ने बहुत पसंद किया। और समय के साथ साथ ये फिल्म अब एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। एक ऐसी कहानी उस वक्त उस दौर में दिखाना जहाँ पर जो समाज है वो मेरे ख्याल से उतना तैयार नहीं था कि दो मच्योर सिंगल पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, दोनों ही सिंगल हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं दोनों के, फिर वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक कंपेनियन चाहिए तो वो शादी करते हैं। तो ये बहुत कहना चाहिए कि उस तरह की रोमांटिक एक बात नहीं है, रोमांटिक फिल्म नहीं है, लेकिन एक कंपेनियनशिप और साथ रहने का जो एक कन्वीनियंस होता है ना कि कोई चाहिए, कोई साथी चाहिए, वैसा वाला एक प्यार या कह सकते हैं कि वैसा एक सेटअप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के लिए। तो उस ज़माने में ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट था और शायद लोगों को उतना अधिक न भाया हो, लेकिन समय के साथ साथ बासु चटर्जी की खट्टा मीठा मतलब वाव, एक वाव फिल्म होके रह गई है हम सबके दिलों में। तो चलिए सुनते हैं फिल्म का टाइटल ट्रैक किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ में।

ज्यादातर लोग खूबसूरती तलाशते हैं हर जगह, और क्यों ना तलाशें, क्योंकि आँखों को जो चीज़ अच्छी लगे उसको ढूंढना एक बहुत ही साधारण सी बात है ना। लेकिन ये जो बात है, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, इससे आप कितना सहमत हैं? ये कभी और आपसे ज़रूर मैं जानूंगी, पूछूंगी, लेकिन अभी आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में मैं बताऊंगी जहां पर केवल बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदर की जो खूबसूरती है वो भी कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक इंसान को वो परिपूर्ण बनाती है, इस बात पर जोर डाला था जिस फिल्म में। 1980 की फिल्म, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक खूबसूरत फिल्म जिसका नाम था खूबसूरत। रेखा ने इतना कमाल का अभिनय किया था इस फिल्म में, और केवल रेखा ही नहीं, सारे के सारे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट्स थे इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत, सब ने अपने अपने अंदाज में अभिनय किया। गुलजार के संवाद थे, और ये जो कहानी है ये सिखाती है हमें कि जीवन में निर्मल आनंद कैसे पाना चाहिए। बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, भाग दौड़ की जिंदगी है, तो हर चीज़ अगर समय से करनी है, समय पर करनी है, मतलब हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा इधर का उधर हो जाए, हो सकता है कभी कि आपका मन करे कि रात को 12 बजे आइसक्रीम खाई जाए, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ाना वो करना है। और ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर बहुत ही सख्त डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ समय पर की जाती है, अच्छी चीज़ है वो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अगर नियम तोड़े जाएं, कुछ जो कायदे हैं वो बदले जाएं, तो कैसा हो फिर? ये फिल्म यही कहती है, सिखाती है।

जो करने से, जिस काम को करने से आनंद मिले उसे करने में कोई हर्ज नहीं। गुलशन बावरा ने इतनी खूबसूरती से ये जो सारे नियम तोड़ दो वाली जो ये बात है उसको एक्सप्लेन किया है। मतलब नियम वो टूटे जिनके टूटने से कोई हर्ज नहीं। चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं सेल्युलॉइड सुपोइट्स छायालोक के अंतर्गत। और देखते देखते कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, तो एक और फिल्म का यहाँ जिक्र जरूर करना है। 1994 में रिलीज हुई थी फिल्म 5 अगस्त को, और ये एक ऐसी फिल्म है जो आइकॉनिक फिल्म रही। गाने इसके बहुत सारे गाने, और आज भी जब इस फिल्म का जिक्र होता है तो गानों की स्पेशल तरीके से हमको याद आती है। गाने इतने अच्छे थे फिल्म में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का एक स्पेशल गाना दीदी तेरा देवर दीवाना, इस गाने को नुसरत फतेह अली खान की एक फेमस कव्वाली सारे नबियों दा नबी की लय से प्रेरित होकर तैयार किया गया था। देव कोहली ने गाने को इस तरह से लिखा भी कि उसी तरह की एक ट्यून इस गाने में ली जाए। वेल, आज तो समय है नहीं कि ये वाला गाना मैं आपको सुनवाऊं, टाइटल ट्रैक जरूर सुनवा सकती हूँ।

7:54 और 44 सेकंड फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय और वक्त हो चला है कि मैं आपसे कहूँ टाटा बाय बाय। और जाते जाते एक ऐसी ही फैमिली ड्रामा फिल्म का गीत आपके साथ छोड़े जाऊंगी, जहां पर जो घर का जो कुत्ता है, जो पेट है, वो है नरेटर, सूत्रधार, और बताता है वो सबको अपनी इस डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में, जहाँ पर लोग साथ रहते तो हैं लेकिन साथ रहने का शायद बस दिखावा ही है। 2015 की फिल्म दिल धड़कने दो, जोया अख्तर की ये फिल्म जो है ये एक अद्भुत अलग सिनारियो, एक अपर क्लास प्रिविलेज को टारगेट करती है, क्रूज पे जाती है, परिवार की जो सारी जो कहते हैं ना जो मंडली है, दोस्त है, मित्र, सब मिलकर जाते हैं और वहां पर फिर क्या होता है, जो परिवार है फ्रैक्चर्ड परिवार है, डिसफंक्शनल है, लेकिन फिर भी कैसे सब साथ आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म और इस फिल्म का एक गीत चलते चलते आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ। चैनिका को आप सुन रहे थे छाया लोक सेलेरॉइड सुपरहिट्स पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक,
1: नमस्कार दोस्तों, 107 FM रेनबो पर मैं बाबे हाजिर हो गई हूँ लेकर छाया लोक इस घंटे में। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे, फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, मन की बातें करेंगे और साथ ही साथ अपने पसंद के गाने भी सुनेंगे, तो फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। और फिलहाल चलिए मैं तो शुरुआत करती हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान के इस गाने से।

0: इस खूबसूरत गाने से शुरुआत हो चुकी है और हमारे जो पहले कॉलर है वो भी हमसे जुड़ चुके हैं अपने दिल की बात कहने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्कार पापिया जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: जी शुक्रिया पापिया जी, मैं मोहम्मद नासिर बेरिया बेटा कोलकाता से।
0: जी नासिर जी, कैसे हैं, हाल चाल कैसा है, घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी हाल चाल भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, घर में भी सारे लोग अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल।
1: और मौसम के मिजाज जो है वो कुछ या तो अगर कहा जाए तो बहुत बेहतर है या फिर बेहतर नहीं है। बेहतर इस नस्बत से नहीं है
0: जी।
1: जो लोग आने जाने वाले हैं सफर में जॉब के लिए या फिर जॉब से आने वाले

0: या फिर मार्केट जाने वाले उनके लिए बहुत परेशानी है
1: जी,
0: और जो लोग इंजॉय कर रहे हैं इस बरसात को उनके लिए बेहतर है।
1: सही बात है।
0: जी जी,
1: तो बताइए आज का दिन कैसा गुजरा आपका?
0: आज का दिन बहुत बेहतर गुजरा पापिया जी, इसलिए मैं कहूँगा कि बेहतर गुजरा कि अगर अपने दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए और खुश हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मैं मेरा ये मानना है।
1: चलिए,
0: और अगर मैं दूसरों को खुश कर करके मैं खुश हो जाता हूँ ये समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छा दिन क्या है।
1: तो आपको क्या तो, लगता है दूसरों को खुश करना पसंद है आपको या फिर अपने दिल की?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैंने एक अटके हुए मुसाफिर थे जो कोई मंजिल अपनी तलाश रहे थे, रास्ता तलाश रहे थे या फिर कहीं एग्जाम देने जाना था, उसे लोकेशन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे लोकेशन समझाया और रास्ता बताया और कहा कि आपको किस तरीके से जाना है, क्या ऑटो पकड़ना है या क्या बस पकड़ना है। और वो बहुत सेटिस्फाइड होकर करके जब गए अगले अपने एग्जाम देने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हो सकता है टाइम के मुताबिक अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँच गए होंगे
1: जी।
0: मुझे बहुत खुशी लगा
1: कि
0: मैं उनका हेल्प कर पाया।
1: जी जी, चलिए थैंक यू सो मच नासिर जी कॉल करने के लिए और बताने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब जस्ट एक होता है ना इंटरेक्शन, अच्छी बातें अगर हो जाए तो फिर दिन काफी अच्छा बीत जाता है। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: गाना आज का मेरा धर्मेंद्र पर के अदाकारा पर है जिनका नाम है आजाद, गाने के बोले राजू चले राजू अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू।
1: ओके, चलिए तो फिर सुनते हैं ये गाना। ओके चलिए, वापस मुलाकात होगी कभी, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।
0: गुड नाइट।

0: तो इस बहुत ही जबरदस्त गाने के बाद चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो,
1: हेलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: हाँ मैडम जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है, कुछ बोलने का भी आप लोग ये रखा नहीं मैडम। तो देखिए, मैं पूर्व बर्धमान से बुधबुद से प्रवीर कुमार मंडल बोल रहा हूँ
0: जी। प्रवीर दा, कैसे हैं और हाल चाल कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा है मैडम जी, आप कैसे हैं मैडम जी?
0: बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और वहाँ पे मौसम का हाल बताइए जरा।
1: अरे बाप रे, इतना रो रहा है, कल मेरा गगन जी इतना रो रहा है जो पानी माने रो होते ही है, वो हो रहा है बहुत जोर है। अभी थोड़ा फिलहाल थोड़ा बंद किया है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं जे मेरा तिरपाल फूटा हो गया। यही है बात। मैडम जी, एक गाना हम बोले हैं कर्मा फिल्म का, कविता कृष्णमूर्ति का एक है, वो गाना यदि आपका पास है तो सुनाइएगा। हम सुन रहे हैं,
0: थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल है हमारे पास, हम आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल रखेंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, वापस मुलाकात होगी कभी।
1: ठीक है,
0: गुड नाइट, नमस्कार। नमस्कार, तो चलिए मौसम का हाल चाल तो जान लिया, पूर्व वर्धमान का भी, अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, तो आपके यहाँ का मौसम का हाल कैसा है फिलहाल बताइए अपने दिल की बातें। फोन लाइन्स खुली हुई है और सुन लेते हैं तब तक ए वतन तेरे लिए।

0: चलिए देशभक्ति के बाद आगे बढ़ते हुए हमारे अगले कॉलर को ले लेते हैं अपने साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: पप्पे दीदी, आमी स्वप्ना दीदी बोलछी, लेखन कालिंदी थेके।
0: हाँ स्वप्ना जी, कैसे हैं और तबीयत कैसी है अभी आपकी?
1: अभी तो तबीयत थोड़ा ठीक है।
0: दर्द वगैरह तो नहीं है?
1: हम बेचैन ही होते हैं कि पप्पे दीदी आएगा तो भगवान सुनेंगे, गाना सुनाते हैं।
0: अच्छा, दर्द पैर में चोट लगी थी ना आपको, तो दर्द कैसा है?
1: अभी थोड़ा ठीक है दीदी, सोचते है कि पप्पे दीदी आएगा तो अच्छा से गाना सुनेंगे, आपको फोन करते हैं।
0: जरूर, थैंक यू सो मच, इंतजार किया आपने। और घर परिवार में सब ठीक है ना?
1: सब ठीक ठाक है दीदी।
0: चलिए, थैंक यू।
1: मैंने क्या क्या के गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी बोलिए। मौसम नीली रंग राई जी, चलिए सुनवाते हैं आपको गाना ये। और आप रहिएगा, संभल के रहिएगा, वापस मुलाकात होगी कभी, ठीक है?
1: ठीक है दीदी,
0: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
0: तो सुन लेते हैं स्वप्ना दी ने जो रिक्वेस्ट किया, जो शाम होने आई लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में।

0: सूर्य की घड़ी बता रही है समय 8:25 और 54 सेकंड। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ,
0: जी राजकुमार जी कैसे हैं? हाल चाल कैसा है? घर परिवार में सब कैसे हैं बताइए।
1: आप मुझे गाना सुना दीजिए फिल्म धर्म सिंह का।
0: जी
1: किसका गाया हो? मुकेश के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ओके।
1: इसलिए इनका गाना मुझे बहुत मतलब कर्म की और दर्द मतलब अच्छे लगते गाने।
0: अच्छा तो, ओके।
1: तो गाने के बोल है तो तुम आएगा हाथी के मोल जगमी बोल
0: ओके। चलिए थैंक यू सो मच गा के सुनाने के लिए। और चलिए सुनते हैं हम सब मिलकर ये गाना। ओके
1: ओके।

0: जी है, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। माटी के मोल हम मिट जरूर जाएंगे, माटी में मिल जाएंगे, लेकिन कहने की हमारा जो व्यवहार है वही हमारे साथ रहता है इस दुनिया में। ये बात बिल्कुल सही है। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं हमारा अगला फोन कॉल भी। हेलो
1: जी, शुभ संध्या, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: जी धन्यवाद दीदी,
0: कैसे हैं बताइए, बताइए नाम बताइए, सब सब जानना चाहिए।
1: पारस पंडित, चिचड़ा, हुगली से।
0: जी पारस जी, कैसे हैं, मौसम का हाल चाल कैसा है, घर परिवार में सब कैसा है?
1: जी दीदी, मौसम थोड़ा बेहाल है लेकिन अभी से मौसम ठीक है, सुहावना हो गया है, चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रही है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: चौधरी का चांद जो बोला नहीं जाता, वो पूरा चौधरी का चांद पूरा खिला हुआ है।
0: तो एक तो आसमान में चौधरी का चांद खिला हुआ, एक आपके घर पे भी होगा।
1: जी जी वो तो है ही है, खिला हुआ है, आप दो टहने भी है। जी बोलिए, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है।
1: धन्यवाद, सब ठीक रहना ही चाहिए
0: एकदम।
1: तो अभी मैं

0: अभी मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म दुल्हन वही जो पियामन भाई।
1: ओके।
0: और गाने के बोल है खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके,
1: ठीक है,
0: यशोदास और हेमलता जी की आवाज में।
1: जी जी जी, जी। चलिए फिर सुन लेते हैं हम सब मिलकर ये गाना। किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं क्या? अपने चांद रात को
0: आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ताकि सभी के जीवन में खुशियाँ हो। और उसके बाद मैं अपने घर परिवार वालों को सुनाना चाहता हूँ, सभी श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ।
1: ठीक है, चलिए वापस मुलाकात होगी। तो पारस पंडित जी ने खुशियां ही खुशियां सुनने की फरमाइश की है, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना हम सब मिलकर।

0: सूर्य की गर्मी समय हो गया है 8:38 का और चलिए ले लेते हैं हमारा अगला फोन कॉल अब। हेलो
1: हेलो नमस्ते, मैं बरगाछा जिजापुकुरपार हावड़ा से प्रशांत धाक बोल रहा हूँ।
0: जी प्रशांत धाक, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: सब ठीक ठाक है, आप भी अच्छे हैं ना?
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बताइए मौसम का हाल चाल कैसा है, दिन कैसा गया?
1: सब ठीक ठाक है, मौसम का हाल थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, अब तो रुक गया है, ठीक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: आज तो महाराष्ट्र में गणेश विजय है
0: जी,
1: तो इसलिए हम एक गाना सुनना चाहते हैं वांटेड फिल्म से, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा तेरा ही जल।
0: ओके ठीक है, चलिए ओके।
1: गणेश विजय हो रहा है, सभी श्रोताओं को मैं डेडिकेट करता हूँ।
0: ओके ठीक है, चलिए सुनते हैं ये गाना हम सब मिलकर। ओके गुड नाइट।

0: इस गाने के जलवे देखने के बाद हमारे जो अगले कॉलर है वो भी इंतजार में है हमारी लाइन में, तो चलिए देखते हैं कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।

0: तो फटाफट बता दीजिए, घर पे काम करते करते कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: हीरो तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है, एक गाना सुनिए देवन।
0: ओके ठीक है, चलिए सुनते हैं हम सब मिलकर ये गाना। ओके अच्छे से रहिएगा, गुड नाइट।
1: गुड नाइट।

0: समय का पहिया भी घूम रहा है और हमारा और आपका साथ अब कुछ पलों का रह गया है, पर ऐसे में भाई एंथुसियाज्म नहीं जाना चाहिए, है ना। फिलहाल हमारे अगले कॉलर के साथ चलिए जुड़ जाते हैं। हेलो
1: हेलो, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: बेलगरिया से शुभोजीत बोल रहा हूँ।
0: जी शुभोजीत, कैसे हो, हाल चाल कैसा है, तबीयत कैसी है, ये बताओ सबको।
1: ठीक है, सब ठीक है। अभी मौसम तो थोड़ा बहुत हमारे एरिया में थोड़ा बहुत सुधरा है, सुबह से बारिश नहीं हुई लेकिन शाम से शुरू हो गया इसका तो ऐसे ही तो लेट बैक एटीट्यूड हो गया है, तीन चार दिन से कंटिन्यूअस, तो कामकाज में भी ढीलापन आ गया है।
0: एक ग्लूमी से, मतलब वेदर अच्छा लगता है लेकिन अब ज्यादा एट अ स्ट्रेच बारिश होने से नहीं लगता कि बड़ा ग्लूमी सा एक वेदर हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि बैठ के चुपचाप कॉफी के साथ और स्नैक्स के साथ हॉरर मूवीज देखनी चाहिए।
1: बिल्कुल एकदम, हॉरर मूवी तो होना ही चाहिए। और हॉरर मूवी देखने का अंदाज भी ऐसा है कि मैं जैसा करता हूँ, कान में हेडफोन लगा लेता हूँ जो नॉइज कैंसलेशन वाला टाइप का, बाहर का कोई आवाज ना आए, और एक छोटा सा बल्ब या नाइट लैंप, बस वो देख लो वो सराउंडिंग। तो आज मैं एक गाने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बहुत फेवरेट गाना है और फिल्म भी, वो है सदमा,
0: नहीं बनी होगी उसके बाद,
1: नहीं बनी होगी एक्चुअली। और कमल हसन और श्रीदेवी ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिए है, क्या एक्सप्रेशन है वो लोग के थे, फेस एक्सप्रेशन मिनटों में चेंज हो जा रहा था।
0: एग्जैक्टली, the storyline, it's a very simple storyline, सब कुछ बहुत simple है लेकिन it's a beautiful film, I guess.
1: एक मैं comparison तो नहीं करूँगा लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने जो बर्फी में करने की कोशिश की, वो actually मुझे श्रीदेवी से भी लगता है काफी सारी inspired है कि क्या एक अलग ही एक, क्योंकि काफी मुश्किलें होती है जब आप ऐसे एक रोल प्ले करते हो जो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल नहीं है, जो चैलेंज है मेंटली चैलेंज, तो उस तरह का अदाकारा मतलब सराहनीय है
0: एकदम। नहीं, बर्फी इज आल्सो अ वेरी गुड मूवी, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे हैव एक्टेड रियली वेल, बोथ ऑफ देम एक्टेड रियली वेल,
1: एंड प्रियंका चोपड़ा इज डूइंग वंडर्स लाइक
0: एग्जैक्टली, प्रियंका चोपड़ा बीइंग प्रियंका चोपड़ा,
1: जी एकदम एकदम। और एक मैं अपना एक फेवरेट बता दूं, एक ग्रेस अगर डिफाइन करना पड़े तो मुझे लगता है सुष्मिता सेन, पर्सनल चॉइस, जब वो बोलती है ना, मतलब इतना सादगी से बोलती है सबको, अगर कोई इरिटेटिंग सवाल भी हो उसका जवाब भी देती है, मतलब हैट्स ऑफ टू हर।
0: एग्जैक्टली, शी ओन्स दैट टाइटल विदाउट एनी रीजन, कोई मतलब एक्चुअली में शी इज द राइट कंटेंडर ऑफ दैट टाइटल, अदरवाइज कैसे ही होता फिर। तो अभी चलो ठीक है, ऐसे घर में सब कुछ ठीक है ना, कोई इशू नहीं है
1: अभी फिलहाल, तबीयत भी ठीक है, चलो भगवान का शुक्र,
0: बिल्कुल टच वुड एकदम ठीक रहना और वापस मुलाकात होगी क्योंकि समय है तो अब खत्म हो चला है,
1: आप अपना ख्याल रखिएगा,
0: बिल्कुल चलिए मिलेंगे, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो ये थे शुभोजीत और रिक्वेस्ट किया है ऐ जिंदगी गले लगाने, और व्हाट अ सॉन्ग टू एंड द शो, सुनते हैं ये गाना और मैं भी आपसे लेती हूँ विदा, वापस किसी और दिन किसी और समय कुछ और गानों और बातों के साथ वापस मिलने का वादा करते हुए मैं पापिया फिलहाल कहती हूँ गुड नाइट, अलविदा, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए 107 FM रेनबो, और अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।

0: থেকে সেটা শুনবো, তারপর 10:20তে আরও একবার সুনন্দার অরিজিৎ তোমার কাছে ফিরছে তোমার প্রিয় লাভ জাংশন নিয়ে। তাই লাভ জাংশনের যাবতীয় কথা তুমি কিন্তু 9903655992 লিখতে ভুলো না, আর সেখানে তোমার মেসেজ আসতে থাকুক। আমাদের ওদিকে লাভ মিটার চলছে, সেখানে গিয়ে তোমার লেখা চলতে থাকুক, আর বাদ বাকি একটুখানি অপেক্ষার পর আরও একবার ফিরছি তোমার কাছে তোমার লাভ জাংশনে।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punshi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidampa and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
3: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions in individual final, finishing 5th. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the 8th place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
2: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
4: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
2: इंडिया हैड अ गुड डे इन टेबल टेनिस एज वेल। शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट।
5: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
2: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
4: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हांग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन योशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2 11-5 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4 11-3 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11 11-8 11-3 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
2: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
4: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
2: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
4: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12 19-21 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
2: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after

0: beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
1: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
0: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
2: Boxing ring se Bharat ke liye mili juli khabar samne aayi hai. Purushon ke 60 kilogram varg mein Sachin ne shandar pradarshan karte hue quarter final mein jagah banayi, jabki mahila 54 kilogram varg mein Preeti Pawar ka safar round of 16 mein hi khatam ho gaya. Pehle baat Sachin ki, unhone Jordan ke purv Asiayi champion aur Vishwa championship ke kaans patak vijeta Muhammad Abu Jaje ko kade muqable mein 4-1 ke nirnayak faisle se shikast di. Sachin ne shuruaat se hi tez raftaar aur satik panchon ke sath muqable par dabao बनाए रखा. अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई. भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
0: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
3: भारतोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारतोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
0: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
1: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
0: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
3: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए. सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27

0: इससे पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांशु सिंह, तेजस पाटिल और सचिन कर रहे थे। एशिया स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Ambrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samai Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
2: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Sachinappa and V. Senthilkumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's short put final, while Praveen Chitrawal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400 meter final in athletics, with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400 meter final. And athletics action ends with the women's 1500 meter final, with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

अनुष्ठान प्रचारित होच्छे 107 FM रेनबो ए आपके लिए हिंदी छायाछबिर गाने आपनादेर संगे आमि रोयेछि उज्जवल परेर गान फाना फिल्म थेके सानू निगम एवं सुनिधि चौहानेर कण्ठे

आपके लिए हिंदी छायाचित्र गाने रे यह अनुष्ठाने शेष गान असिकी टू फिल्म थेके अरिजित सिंह कंठे अनुष्ठान प्रचारित 107 FM रेनबो।